इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
4: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM हर दिल।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
4: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले
0: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन
5: धड़कन। वायरल है तभी व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे
1: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप रेडियो चुनार

0: bunch of zoos. Kaun aaya?
1: It's the hardest frequency here, Dil Ki Dhadkan Radio Channel 90.4 FM. Aap enjoy kar rahe hain Mastar Show. What's up? फ्रीक्वेंसी पर अपनी बात रखने के लिए शो का हिस्सा बनने के लिए 8899904904 इज द नंबर. याद रखिए आपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर. साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में. हर दिल की धड़कन रेडियो चनार से दिल का तेरा हो.

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: बच्चे ज्यूस।
1: कौन आया?
2: ज्यूस।
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो। व्हाट्सएप शो के सफर में मैं हूं आपके साथ ही और जेसियस। और दोपहर के 2:22 आई एम हियर इन द स्टूडियो आपसे बतियाने के लिए, आपकी सुनने के लिए, अपनी सुनाने के लिए और आपकी कही सब तक पहुंचाने के लिए। वार्तों का वार्तालाप आप जनाब तो चलता रहेगा। फिलहाल पते की बात यह है कि 8899904904 8899904904 नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। डीएम भी कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पर सर्च करें ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो, डीएम करके भी आप शो में शामिल हो सकते हैं। रेडियो चुनाव 90.4 एफएम और ब्रदर आइए सुनाया जाए आपको आज का वेदर।
4: रेडियो चुनाव वेदर अपडेट।
3: जी हाँ, आज का दिन रहेगा सुहाना, आपका दिल होता रहेगा पल पल दीवाना और दीवाने दिलों का धड़काएगी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव।
4: रेडियो चुनाव वेदर अपडेट।
3: आज दिन का मौसम का हाल जो है कतई गर्मी से भरा होने वाला है। इस 30 डिग्री सेल्सियस फॉर टुडे।
4: रेडियो चेन्नई वेदर अपडेट।
3: जी हाँ, 30 डिग्री होने के साथ साथ पूरा दिन जो है सनी है, सूरज चमकता रहेगा, बादल कहीं भी कोई भी अड़चन नहीं ला रहे हैं आज के लिए।
4: वेदर अपडेट।
3: यू इंडेक्स अभी मॉडरेट पर है, ह्यूमिडिटी 50% और साथ ही साथ विंड स्पीड 0 है फिलहाल के लिए। विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स। आज का सनराइज हुआ 5:35 पर, आज का सनसेट होगा 7:22 पर। अगर आपका भी दिल रेडियो चुनार पर आ चुका है तो मेरे यार हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काओ, अपनी बात हम तक पहुंचाओ। हॉट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार, मैं हूँ जॉक्स, धड़काते रहो।

Merhaba ba ba ba ba. Merhaba ba ba ba ba. Merhaba ba.

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: दोस्तों रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो का सेगमेंट वायरल ऑन व्हाट्सएप। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप, जहां पर वायरल चीजें आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जानी लोगों ने ये बात है मानी कि वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर बात करते हैं आज जैसी चीज की जो आपके दिमाग पर डायरेक्ट असर रखती है, डायरेक्ट लाल इंदरी असर क्या रखती है, इस चीज को कहते हैं

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है शिप इज सेफ इन हार्बर बट दैट्स नॉट व्हाट शिप्स आर फॉर। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव सिटी हक धड़का

0: Zeus.
1: Kon ajo.
2: Zeus.
3: दोस्तों रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप। मैं हूं आपका साथी जॉक ज़ियस। शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो का हिस्सा आपने भी बनना है। अपना किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए 8899904904 इज द नंबर। 8899904904 आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। जी हाँ, नवाज सूफी हमारे साथ जुड़े हैं पेट शहरन खाक से। लिखते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच नवाज पहले तो जुड़ने के लिए। और प्रोग्राम की तारीफ के बाद इन्होंने लिखा है खिली खिली धूप है, टेम्परेचर नॉर्मल डिग्री से कहीं ज़्यादा है। देखिए जाहिर सी बात है, और इस ज़्यादा टेम्परेचर का वादा कुदरत नहीं बल्कि हम इंसान करते हैं। जिस तरह से हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगल साफ कर रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मदर नेचर हमसे नाराज ही चल रही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन नवाज सोफी का हमसे जुड़ने के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू मेट। साइमा हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं सर रोज रोज मैसेज करके आपको परेशान करने के बिना कोई गुजारा नहीं है, अच्छा लगता है। तो रोज रोज परेशान किया कीजिए, हमारी बहनें जितना भी प्यार देती हैं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राफिया हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं राफिया सर मुझे भी जॉक बनने का शौक है, जॉक राफिया नाम कैसा रहेगा? उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। थैंक यू सो मच राफिया हमसे जुड़ने के लिए।

याद रखिए आप डीएम भी कर सकते हैं और डीएम करके भी आप शो में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सअप शो और व्हाट्सअप शो में आज हम बात करने वाले हैं उन स्टोरीज के बारे में जो कि हॉलीवुड में है। जी हाँ, कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी स्टोरीज जो आर्टिस्ट और एक्टर्स के बारे में है जो लोगों को इंस्पायर करती रहे हैं। और वही अगर हम हॉलीवुड एक्टर्स से हटकर हॉलीवुड मूवीज की बात करें तो देयर आर सो मेनी मूवीज जो रियल स्टोरीज पर बेस्ड है और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आप भी हमें बता सकते हैं कौन सी हॉलीवुड मूवी आपकी फेवरेट है या कौन सा हॉलीवुड का एक्टर आपके दिलों को धड़काता है। और इस फ्रीक्वेंसी से हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM, बात होगी आज हॉलीवुड इंस्पायरिंग पीपल। सो रेडियो चुनाव की हॉट फ्रीक्वेंसी पर सीधे धड़काते रहो।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: नोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

जी हाँ बिल्कुल, जो भी मैं बोलू वो हैपन तो हो गया ना। सैटरडे बॉस एंड सैटरडे पर आग लगाने आ गए। फॉरेन माय मनी माय एक्सेंट अ टोपी पहना देनो कैप पे 91.4 रेडियो चुनार पर आ गया। सो चुका है शो चुनार बीट्स का, यानी कि माइक है, ट्राइब है, वाइब है, आप है, हम है, मौका है, दस्तूर है, कहाँ जाने का।

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स ढेर सारी बातें मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। बताए तो सुपर एक्साइटेड हमेशा की तरह बिकॉज इट्स सैटरडे वॉस और सैटरडे में मजा आ जाता है ना, और मजा आ जाएगा नहीं, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा और मजा ही मजा आएगा। आई नो ये सैटरडे का ना एक अलग ही क्रेज होता है, चार्म होता है। बात करें वो एम्प्लॉय की ना अलग ही खुशी होती है कि भैया जी सैटरडे आ गया, रहा नहीं जाता है, क्योंकि बिल्कुल हमारे प्लान्स होते हैं और वो प्लान्स हमने संडे को एग्जीक्यूट करने होते हैं। सो इससे बड़ी खुशी क्या है कि मेरी भी खुशी है, खुशी में खुशी हो जाए और बस हम खुश हो जाए। बस यही है कि खुशी ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब कौन से लोग हमारे खुशी और गम में हमारा साथ देते हैं वो भी तो मैटर करते हैं। अब आपके लाइफ में कौन कौन ऐसे वो कहते हैं ना करीबी लोग आपको लगता है कि सच में आपके बहुत ही ज़्यादा करीब है और सच में बाबा वो हर सिचुएशन में आपके साथ होते हैं, यानी कि हर एक बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन हर चीज़ आप तक पहुंचती है और आप बता सकते हैं अपने हालात जज्बात और ख्याल। देखिए नाम आपको क्या ही, अब देखिए ये तो वो कहते हैं ना कि दिल की वो धोखाधड़ी वाली बात है कि नाम आपको मेरा ना पता और काम का तो आप बखूबी जानते हैं। देखिए बस तो कोई जाने नहीं देता है, पर मैं तो कह रही हूँ ये कि काम मेरा है बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको सुनाना, ढेर सारी बातें करना, एंजॉय करना, क्योंकि पूरी वाइब ट्राइब है बीट्स ऑन रिपीट है, इट्स हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM।

Char Beats with Archie Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

Jeremy. Char Beats with Harjit. Only on Radio Channel 90.4 FM.

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें हो रही है और मस्ती मजाक फन भी होता है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर आपको बता दें कि स्लो मोमेंट ऑब्जर्व किया गया है जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू नेशनल हाईवे पे। लेकिन आपको बता दें कि बोथ साइड से लो किया जा रहा है गाड़ियों को, बिकॉज जो मेंटेनेंस कई कई जगहों पे जो रास्ता है लैंडस्लाइड्स की वजह से कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन हो गया था ट्रैफिक मूवमेंट का, या फिर ओवरऑल रास्ता कहीं ना कहीं कई कई जगहों पर ख़राब हुआ था, उस पर अभी अब काम किया जा रहा है, मेंटेनेंस चल रही है। और ड्यू टू दैट ट्रैफिक मूवमेंट भी कभी कभार स्लो होता है, और हमारे गाइडलाइंस जो हमें दिया है ट्रैफिक पुलिस ने, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू दैट ही हम अपनी डेस्टिनेशन प्लान करें। लाल के लिए आप गाड़ी चला रहे हैं, शूटना और बीट्स एंजॉय कर रहे हैं, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाए और

0: अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, लचका पे ओवरटेक करने का मतलब ही है नॉट फेयर बाबा, क्योंकि उसमें फिर वही है कि हमें हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, फाइन बनना पड़ता है और हो जाता है हमारा नुकसान नहीं, हम होने देते हैं, वी केयर फॉर यू और हम इस चीज़ को मानते हैं और हमारा फ़र्ज है कि हम आप तक सही जानकारी पहुँचाएं। सो मैं तो यही हूँ, मुझे बताइए कि आखिर आप कहाँ जाने का सोच रहे हैं, प्लान्स क्या है आखिर, हमें भी तो बताएं ताकि हम भी अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली बनाएं।
1: तू तो रोलर से उड़ गया होगा,
2: उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी।
0: नहीं, ये पब्लिक तो चिल्लाएगी और ये बोलेगी अरे कोई इनसे सीखे गाड़ी चलाना, कोई सीखे, क्योंकि पॉजिटिविटी का है ही वो, मतलब कि वो कहते हैं ना कि एक सही इम्पैक्ट बढ़ता है, आप सही से गाड़ी चलाओगे सही इम्पैक्ट बढ़ेगा, एंजॉय कीजिए ट्रैक को। मुझे कुछ कहना चाहते 8 8 9 0 4 9 0 4 पर कॉल कीजिए, टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शूट नॉट रीच कर सकते।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हाँ बहुत सारे फॉलोवर्स ख़त्म हो रहे हैं और स्पेशली सेलिब्रिटीज़ जैसे विराट कोहली, रोनाल्डो और ऐसी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ है, यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनके मिलियंस फॉलोवर्स है उनके फॉलोवर्स कम हो रहे हैं। अब ये ब्रेकिंग है क्योंकि अगर हम देखें तो भैया जी आज पूरा दुनिया, आप देख लीजिए कि हिस्सा पूरी दुनिया का ना वो इंस्टाग्राम पे है और बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल से बड़ा प्यार करते हैं, स्पेशली कश्मीर में बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग रो भी रहे थे कि भैया जी हमारी जो मेहनत है 10 साल की मेहनत है, 5 साल की मेहनत है और इंस्टाग्राम ने वो चीज़ ख़त्म किया है, हमारे अकाउंट्स जो है वो बंद हो रहे हैं और ये चीज़ इनजस्टिस है। बट ये तो देखा जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेहनत भी की होती है और इस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग जो है अपने जो अकाउंट्स है अपनी मेहनत से जिन्होंने कुछ बनाया होता है वो भी खो देते हैं। बट इट्स नॉट अबाउट दैट, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसकी ये ज़रूरत है। आई मीन स्पेशली जब हम फेक अकाउंट्स की बात करें या फिर स्पैम्स की बात करें, इनकी वजह से लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा तंग आ भी गए हैं। और अगर हम देखें अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी की जहाँ पर बात आती है तो कितना ज़्यादा अभी हम देखें तो लोगों की प्राइवेसी वो ख़त्म हो रही है। एंड कुछ लोगों का मानना है कि ये चीज़ें सही थी, कुछ लोग का कहना है कि हमने अपनी रोजी रोटी से खो दी। आज की खबर। अब आप बताइए कि क्या है इस मामले में, यानी कि इस मामले में आपकी राय मुझे बताइए। शो का हिस्सा बन जाइए क्योंकि हाथ से सिलसिले बन जाते हैं और हमें कभी कभार पता नहीं होता है कि ये हमारे साथ आखिर हो क्या गया।
1: टूटे टूटे टुकड़ों को समेट कर,
0: जी हाँ, टूटे टूटे टुकड़ों को अभी समेटना पड़ेगा, हमने फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम अपनी रीच को फिर से बढ़ाए और अपने उस क्रेडिबिलिटी को मेंटेन कर पाए। 8999049 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, शो का हिस्सा बन जाए और अपनी राय हम तक पहुँचाए।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: बपर खान तीगच जान हावे से सबन मेहमान तीगच जान हावे से आफ्ताब डीशित जून आस मंद छान आफ्ताब डीशित जून आस मंद छान तारक अवसान ती गच जान हावे से वुछमय छल त बल मार छी कार तल वुछमय छल त बल मार छी कार तल संबुल तो रहखान ती गच जान हावे से

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

सच बात है कि मौका दे है और चेयर का भी आपने मारना है, क्योंकि हम शो पर बात कर रहे हैं कंटेंट इज द रियल किंग, बिकॉज कंटेंट सही हो तो अच्छे अच्छे गाना, वो कहते हैं ना कि भैया जी होश उड़ जाते हैं, और अगर कंटेंट इम्पैक्टफुल हो तो क्या कुछ नहीं बदल सकता, यानी कि हम चेंज ला सकते हैं, हम किसी तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। एंड आई बिलीव कंटेंट एक ऐसी चीज़ है ना जिससे हम बिना बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि आवर कंटेंट शुड बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट इज़, कि इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए कि भैया जी आगे वाले समझना चाहिए कि इनसे पंगा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो ज़रूरी है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए आपने मेहनत करनी है, उसके लिए हमने सोचना है, दिमाग पे जोर लगाना है, और आपके हिसाब से क्या कंटेंट रियल किंग है हमें बताइए। शो कैसा बन जाइए 8999049044 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो कैसा बन जाइए।

It's on repeat, show to not repeat, say sorry about it, and we are talking about content is the real king, and ye topic hai aaj hum baat kar rahe hai, aakhir kyun kehte hai content is the king, because agar hum foundational digital marketing ki baat kare to Bill Gates ka bhi yehi kehna tha 1996 mein, jinne highlight kiya tha ki high quality relevant content ultimate jo audience ka engagement hota hai, trust hota hai, credibility hai वो बढ़ जाती है, एंड मोर ओवर लोगों को पसंद आता है हमारी मेहनत और जो उसमें क्रिएटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है।

आरिफ की रिक्वेस्ट आई इस ट्रैक के लिए दोपका से और वो सुनना चाहती है ट्रैक रानी तुम मेरा जा। देखिए आप भी बिल्कुल बिना झिझक होकर आपने बस फोन उठाना है 8999049904 पर कॉल करनी है, टेक्स्ट व्हाट्सएप करना है, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाना है।

इश्फाक की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए फ्रॉम द मूवी पार्टनर, और फिलहाल के लिए मैं हूँ आपकी पार्टनर शो म्यूजिक ऑन डिमांड में, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। एंजॉय कीजिए अपने फेवरेट ट्रैक्स। 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड और आपकी रिक्वेस्ट, हम आपकी फरमाइश पे आपके फेवरेट ट्रैक्स आपके लिए चला रहे हैं। अब देख लीजिए कि ऐसा मौका कहाँ मेरे, यानी कि आपकी चलती है इसे आधे घंटे में। और यहाँ पर ईश्वर की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए, आप इंजॉय कीजिए। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चला 90.4 FM एंड ये है शो म्यूजिक ऑन।

reloaded gun wala. Show music on demand. Aur last request yahan par Rabia ki aayi hai try ke liye. Jawan jaane man haseen dil ruba. Dekhiye main already gaane lagi hui, mera bhi bahut hi pasandida track hai, lekin kya kar sakte hai, time bahut kam hota hai aur abhi show ko tata vibe karna padega kyunki show music on khatam ho jayega par shuru ho jayega show Radio Girls. Ji haan, Radio Girls jisme main aur Asra aapse dee sari baatein karte hain. 2 baje start hoga. So kya rahega aaj ke show ka टॉपिक और किस पे हम बात करने जा रहे हैं शो रेडियो गर्ल्स पर, बस कुछ ही समय के बाद अब तक मैं जानकारी पहुंचाऊंगी, आप तक बताऊंगी, मिलके हम आएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे. तब तक आप अपना ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए शो म्यूजिक ऑन डिमांड का लास्ट ट्रैक.

0: आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

कि बिजली का तो पता नहीं पर शो हंगामा करने जरूर आई हूँ। ना ना ना ना ना ना मुझे तो आरजे असरा कहते हैं और शो शुरू हो चुका है हंगामा, जहाँ होता है भरपूर ड्रामा, एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स, लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ यही मिलता है।

0: देखिए सैटरडे को 2:30 से लेकर बराबर 4 तक आप और मैं साथ होते हैं और कल संडे है एंड आई बिलीव कि यहाँ पे सब एक्साइटेड होते हैं, चाहे हम रेडियो चुनार की बात करें या हम पूरी दुनिया की बात करें, एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड संडे के बारे में, क्योंकि हफ्ते में ऐसा दिन जो बहुत ही खूबसूरत, मधुर और जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं वो आप खुद अज्यूम कर लीजिए. बट आई बिलीव कि गॉड्स फेवरेट आर दोज जिनको सैटरडे भी छुट्टी होती है. और देखिए शो हंगामा शुरू हो चुका है और इस बात की खुशी भी शुरू हो चुकी है कि कल संडे है और मैं आपको याद दिलाती रहूंगी कि कल संडे है, आज शनिवार रात ही है, तो अपना ख्याल रखना है और कुछ ना कुछ तो करना ज़रूर है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम यू कैन रिचार्ज, दिस इज़ द टाइम यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, विद लव्ड वंस. बट देखिए हमारी एक रीत है, प्रतिष्ठा अनुशासन है कि आते आते ही कुछ ना कुछ क्रेजी प्ले होता है.
1: वो चली देखो प्यार की गली, उसे रोके ना कोई.
0: जी नहीं, मैं तो कहीं नहीं चली, पर बराबर 4 तक यहाँ पे हूँ. और अगर इस ट्रैक की बात करें, इट्स फ्रॉम द वेरी फेमस ऑफ दैट टाइम बॉम्बे वाइकिंग्स.
1: लूटे ना मेरी जान, वो चली वो चली.
0: Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sonar. कुछ ही tracks के बाद मैं वापस आऊंगी करने आपसे बहुत सी बातें. 8899-904-904 is the number you can call, message, text, WhatsApp. मैं हूँ अश्रा, मैं बस यूं गई और यूं वापस आई.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और देखिए, अभी वक्त है कि हम बात करें क्या ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक, एक्स की बात करें, क्या रीपोस्ट हो रहा है, क्या लोग देखना पसंद कर रहे हैं, या इसके अलावा क्या एक्चुअली लोग शेयर कर रहे हैं। और अभी की बात यही है कि एक बहुत ही क्रेजी सा ट्रेंड इज आउट देयर, दैट इज किसी भी कैरेक्टर को पर्सोनिफाई करना, यानी कि किसी भी कैरेक्टर, किसी भी एक्टर के फेमस डायलॉग्स निकाल के उन्हें मिमिक करना और फिर उनके ट्रैक्स पे नाचना या डांस रील्स करना। एंड बेसिकली जितना मैं बोल रही हूँ, जितना एंटरटेनिंग बोलने में लगता है, उससे कई ज़्यादा एंटरटेनिंग ऐसी रील्स देखने में मज़ा ज़रूर आता है। जैसे कि मैं आऊं क्या अपनी पर, या तू बाहर मिल मुझे, या क्या वो जो है ना, वो गरीब हिंदुस्तानियों का वो पैसा, एंड एवरीथिंग, एवरी डायलॉग लाइक दिस आर फेमस राइट नाउ एंड एवरीबॉडी इज पर्सोनिफाइंग इट। एंड कहीं ना कहीं पहले ये चीज़ें क्रिंच लगती थी, बट सोशल मीडिया की दुनिया में ये सब चीज़ें अमेजिंग लगती हैं।

यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, हर कैरेक्टर का जलवा अपनी अपनी ऑडियंस में है. और सलमान भाई की बात करें, सल्लू भाई का क्या ही कहना. एंड स्पेशली इनके डायलॉग्स पे, इनके बिग बॉस के डायलॉग्स पे काफ़ी रील्स बनती हैं. 8899904904 नंबर है. आप ही बताइए कि आपको इनका कौन सा डायलॉग पसंद है. मैं हूँ अस्ट्रॉज जो अंकामा, सुनते रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: बजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Hi, मैं हूँ आरजे असरा एंड यू हैव ट्यून्ड इन टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM। और देखिए, दिस इज जस्ट एन अपडेट फॉर रेलवे लिंक्स, यानी कि बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन या वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं और नई वाली ट्रेन भी है, उनका क्या अपडेट है। और आज का अपडेट यही है कि कोई भी ट्रेन जो भी शेड्यूल्ड है, दैट इज एज पर द समर टाइम टेबल, एंड यू कैन नो अबाउट योर ट्रेन्स बिटवीन स्टेशंस, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन्स, एंड नॉट जस्ट इन कश्मीर बट फुल जो भी इंडियन रेलवेज हैं, सब ट्रेन्स के बारे में जान सकते हैं फ्रॉम द official railway app, that is Rail One। देखिए, इनका तो पता नहीं बट हमारे लिए तो आप मिल गए हैं और 4 बजे तक बराबर ये सेहत बरकरार रहेगा। और देखिए, 4 का वेट नहीं करना है अपने विचार भेजने के लिए, इसलिए जरूरी है अपने विचार शेयर कीजिए। विचारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हम है सही मेरे यार वाला रेडियो।

0: मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. ये है हर दिल की धड़कन. अब देखिए, हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक रहता है, कोई ऐसा खास टॉपिक

जिसके बारे में हम बात करते हैं एंड जो कुछ भी उस बारे में होता है, चाहे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसके इम्पैक्ट्स होते हैं या हमारी दुनिया में उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हर चीज़ के बारे में बात होती है. और आज हम ऐसे अनसंग हीरोज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो एक्चुअली बॉलीवुड इंडियन सिनेमा में पाए जाते हैं, बट यू नो दे आर डूइंग अ वर्क दैट इज़ लार्जर देन लाइफ. हम म्यूज़िक डायरेक्टर्स को जानते हैं, AR रहमान हो, प्रीतम हो और बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो अपना म्यूज़िक तो कंपोज करते हैं बट जो उनके पीछे टेक्निकल मास्टर्स होते हैं जो एक्चुअली सॉन्ग्स में वो पंच, वो क्लैरिटी या इमोशनल फैक्टर डालते हैं बिकॉज ऑफ देयर थिएटर साउंड सिस्टम्स, यानी कि जो वो म्यूज़िक मिक्सिंग करते हैं. और बॉलीवुड में कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनके बारे में बात नहीं होती बट वो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, एंड फॉर दीज रनाउंड म्यूज़िक डायरेक्टर्स उनके बारे में बात होगी. जी हाँ, फर्स्ट क्लास तो है ही, मैं भी और आप भी. और आपके क्या हाल है वो तो आप बताएंगे. 8899-904-904 इज नंबर. आप अपने हाल चाल, सवाल, जो कुछ भी है वो आप बता सकते हैं. और रही बात आज के टॉपिक की, आई विल रिपीट, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट म्यूजिक मिक्सिंग इन इंडियन सिनेमा और कौन कौन से ऐसे लाइक टेक्निकल मास्टर्स हैं जो एक्चुअली इस सब के लिए काम करते हैं बैक एंड पे, एंड कहीं ना कहीं उनके नाम जानना भी ज़रूरी है. मैं मोस्टर शो हंगामा में बस यूं कहीं और यूं वापस आई. सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

Nasilla, nasilla, de la nena, Israel, I'm a rachena.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम। ये है हर दिल की धड़कन। और जैसे कि आज हम म्यूजिक मिक्सिंग एंड इंडियन सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है दैट इज लाइक ही इज आल्सो नोन एज द किंग ऑफ बॉलीवुड मिक्स और इनका नाम है एरिक पिलाय और इनको एक और टाइटल मिला है दैट इज फ्यूचर साउंड ऑफ बॉम्बे। और अगर बात करें इनके काम की तो इट्स वेरी हाई एनर्जेटिक ट्रैक्स से लेकर वो सोलफुल गाने नहीं होते, वो बहुत रोमांटिक या इमोशनल गाने जो होते हैं, वैसे तो इमोशंस हर गाने में होते हैं अपने अपने, पर जो डांस ट्रैक हिट्स से लेकर जो रोमांटिसाइजिंग या रोमांटिक गाने या सैड गाने जो हैं इनकी जो वर्सेटिलिटी है दैट इज़ वेरी फेमस अबाउट इट। और अगर हम बात करें कि कुछ रीसेंट जो ब्लॉकबस्टर्स इन लाइक इनकी वजह से हमें मिले हैं उनमें से कुछ मूवीज़ हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, गदर 2,

और OMG2, दीज आर हिज रीसेंट वर्क. और मैं बात कर रही हूँ एरिक पिलाई की. देखिए अभी सिर्फ एक की बात की हमने, एक म्यूजिक इंजीनियर जो है, साउंड इंजीनियर जो है, मिक्सिंग इंजीनियर है, इनके बारे में बात की है. देयर आर थ्री नेम्स हु आर द बिग थ्री ऑफ मॉडर्न बॉलीवुड, उनके बारे में बात होगी. अभी दो नाम और है, और भी जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक बनाते हैं उनके बारे में भी बात करना बाकी है. और हमारे पास वक्त भी तो है, 4 बजे तक बराबर में यहाँ पे हूँ. 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर बन सकते हैं. हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी का हिस्सा मैं बस यूँ कही, वापस आई, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: only on Radio Chunar 90.4 FM.
1: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, जहां ड्रामा के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है. जी हाँ, हंगामा पे आज बात हो रही है म्यूजिक मिक्सिंग एंड इंडियन सिनेमा, और जो भी साउंड इंजीनियर्स हैं या जो म्यूजिक इंजीनियर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है. एंड देर आर थ्री बिग्स, लाइक बिग थ्री ऑफ इंडियन सिनेमा राइट नाउ, जिसके बारे में पहले हमने बात की. एरिक फिलाय, हु बिलोंग्स टू अ कंपनी दैट इज़ नोन एज फ्यूचर साउंड ऑफ बॉम्बे, और बहुत सारे ऐसे जो हाई एंड ट्रैक्स हैं उन्होंने कंपोज, लाइक बैक एंड पे काम संभाला है. टेक्निकल जो भी प्रोसीजर्स रहते हैं वो संभाले. इसके अलावा जो बाकी दो इन अमंग द बिग थ्री, दैट इज़ शादाब रहीम, जिन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता है ए दिल है मुश्किल के जो भी प्लेलिस्ट है, जो एल्बम है उसके लिए. और ही इज़ वन ऑफ द प्राइमरी मिक्सर फॉर प्रीतम्स मासिव साउंडट्रैक्स. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो म्यूज़िक कंपोजर्स बड़े बड़े हैं, जैसे कि एआर रहमान है, प्रीतम है, और ये लोग खुद सारे काम नहीं करते, बल्कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जॉनर्स, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीपल. बट म्यूज़िक मिक्सिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी भी होना चाहिए, बहुत क्रिएटिव काम है. उसके साथ साथ यू हैव टू हैव नॉलेज फॉर द टेक्निकल मास्टर्स. इसके अलावा शादा ब्रेन के अलावा सनी एम आर एक ऐसे मिक्सर हैं जो ऑफन देखे जाते हैं अरिजीत सिंह, प्रीतम के एल्बम्स में. और बट इनका एक डिफरेंट एक जॉनरा है, वी कुड सी, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स जो कि मॉडर्न एलिमेंट्स हैं और उसके लिए जाने जाते हैं. और देखिए, अभी भी कुछ रीसेंट ऐसे हिट्स ज़रूर दिए हैं बहुत सारे कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक मिक्सर्स ने, उसके बारे में बात होगी, पर कुछ ही ट्रैक्स की बात. अभी के लिए हमने सिर्फ शादाब रहीम और सनी एम आर की बात की है. एंड फिर से आई विल कोट के बिग थ्री ऑफ इंडियन सिनेमा राइट नाउ, बिग थ्री ऑफ मॉडर्न इंडियन सिनेमा राइट नाउ इज एरिक फिलाय, शादाब रहीम एंड सनी एम आर. मैं हूं आस्था शो हंगामा, एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: Keep feeling strong.
1: हाय मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।

जी हाँ, शो है हंगामा और आज हम म्यूजिक मिक्सर्स के बारे में बात कर रहे हैं. एंड यू हैव ट्यून्ड इनटू द हॉरस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम. और अगर मैं बात करूं कि आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, स्पेशली वी वर टॉकिंग अबाउट द नेम्स बिहाइंड सच ब्यूटीफुल वर्क. और अभी की बात करें कि रीसेंट हिट्स और उनके मिक्सर्स क्या थे, म्यूज़िक कंपोजर्स कौन थे, उनके बारे में बात करेंगे. और सबसे पहले बिजोरिया ट्रैक जो एक्चुअली एक रिमिक्स था इन द मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, और दिस वॉज अ मैसिव पार्टी हिट इन 2025 एज वी ऑल नो. एंड मोर ओवर अगर हम देखें तो ये ही जो भी मतलब दैट हैज़ द ट्रेडमार्क, वो पंची मिक्स था, वो पार्टी वाइब था और इट वॉज फ्रॉम मुंबई स्टूडियो सर्किट. इसके अलावा वन मोर्स जेंजीज का न्यू रोमांटिक जो प्रडिक्शन था, एक परसेप्शन जो बना सैयारा देखकर, और जो कुछ भी सैयारा में जो हिट ट्रैक्स थे वो काफ़ी, चाहे हम सैयारा टाइटल ट्रैक की ही बात करें, एंड एवरी ट्रैक वाज लेड बाय तनिष्क बागची एंड हिज रेगुलर इंजीनियर्स. इसके अलावा एक नई फ्रेशली रिलीज्ड मूवी जो एक रीसेंट 2026 रिलीज है, जिसमें अरिजीत सिंह है, और एक्चुअली जो फ्यूचर साउंड ऑफ बॉम्बे एरिक बिलाई की जो कंपनी है, जो टीम है पूरी, उन्होंने कॉकटेल 2 में ये ट्रैक जब तलक ये मिक्स किया था, और आई फील कि एवरीबडी इज़ लाइकिंग इट. एंड स्पेशली जो एक्चुअली कॉकटेल की ओरिजिनल कॉकटेल 1 से जो कुछ भी हाइप बनी थी वो बरकरार रही है कॉकटेल 2. अभी देखिए, हमने तीन मूवीज के बारे में बात की है, तीन ट्रैक्स के बारे में बात की है, तो इन ट्रैक्स को सुनना भी जरूरी है. बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली फॉर यू गाइस. एंड कुछ ही देर बची है, उसके बाद बाय बाय सायोनारा करना है, तो जल्दी से विचार शेयर कीजिए. 8899949904 नंबर, यू कैन कॉल मैसेज टेक्स व्हाट्सएप में.

0: हाय मैं हूँ आरजे सूज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा, ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। ये है

मेरा कहना तो आप सुन ही रहे हैं, और अभी मेरा कहना ये है कि 4 बजने वाले हैं और आज के लिए बस इतना ही। कल वापस आऊंगी, नहीं कल तो नहीं आ सकती, अब आदत हो गई है ना हमेशा बोलने की कि कल वापस आऊंगी, कल बराबर 2 बजे, पर कल संडे है। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड बस यही है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि मेमोरीज हों। कल को क्या शेयर करेंगे आप अपने बच्चों के साथ, बच्चों का भी छोड़िए बट फ्रेंड्स के साथ, या अपने लिए क्या मेमोरीज़ है। सो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ करना रहते चाहिए, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक मेमोरीज। मैं हूँ आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ टुडे ओवर। And now

0: life.
1: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार।

0: है।
1: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Channel 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात। भूल के गोले वो बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा हूँ नई नई जलूंगी।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: अजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4
2: FM।
4: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
1: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो टनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हे मैं हूँ आरजे समानिया।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं
0: है? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दूं बस समझ जाओ।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

इधर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना
1: सा

Ah.

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तारा रा रा रा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना हे याने याने याने प्यार हो गए।

हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

जाते। गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।